0: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुदान शिखर सम्मेलन संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना ये सुनकर विश्वास हो रहा है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल सुहावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप इस क्षेत्र में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देश के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्र

0: की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंच ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करें। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जी मत्तारेल से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हाल ही में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पर परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत से कंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट जल्द ही संसद के दो सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट सनराइजर हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी से चंद्रपुर केंद्र है, सकाळची 10 वाजून 5 मिनिटे झाली आहेत। प्रसारित होत कार्यक्रम मंगल प्रभात।

0: दिल खुलास हा प्रायोजित कार्यक्रम आपण ऐकत आकाशवाणी मुंबई या स्मिता वाहिनीवरून.
1: मन की बात है जन की सभी की कुछ अपनी री संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीद नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार कहता है इंतजार मलयाचल के अंचल से विंध्याचल के आंगरक प्रपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक हुई है मन की बात प्रधानमंत्री साथ. सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव पर सभी प्रसार लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ही. याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: मी आकाश माझ्या चंद्रपूर केंद्रावरून बोलत आहोत. सकाळचे 7:40 झाले आहेत. प्रसारित करीत होत सुगम संगीत.

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंधु को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आज मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे प्रधानमंत्री योनेस हरस्तुर ही इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 बिलियन जॉब्स क्रिएट निकल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमें 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वे फंड की भी प्राथमिकता। मैं नॉर्वे

0: भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देश के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग भर क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉन ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देश के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृत विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पंचकरण, बंदरगाह संरचना विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवीकरण ऊर्जा और डिजिटीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र है। TEP लागू होने के परिप्रेक्ष्य में शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हुई है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से ही मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी उल्लेख उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिस प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक छोटे किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्तम मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुगना भाट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प
7: योजना उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसके सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता दो।
6: अब तक इस योजना से 1,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मनी दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्र

0: क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है, बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 6 दशकों के दान नक्सलवाद कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंप में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाए। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट दी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समकक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शिंदे अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति है। अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा। मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से ही संबंधित है। सीबीआई 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की सीमा को 17 जून तक बढ़ाया है। इससे पहले अमेरिका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 18 अप्रैल को समाप्त हुई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर 7 विकेट पर 180 रन आए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्ले ऑफ द मैच आ गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय मध्य प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भर रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में आज बादल रचने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा रखे, रूस से तेल खरीदारी रखे भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट दावे को प्रमुखता दी है, ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब के

0: श्री ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी पांच शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी पांच शर्तों की सूची थमाई। देशभर की खबर है, ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नॉर्थ टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार महाराष्ट्र लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने संपादकीय की पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गृह भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी है। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की ताश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब भी ज्यादा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में अजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व आचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। कार्यक्रमाच्या वतीने ऐकवीत आहोत मोहम्मद या चित्रपटातील मुकेश ने गायलेलं शैलेंद्र यांचं गीत, संगीत सलील चौधरी यांचं आहे।

इस छोटे से अंतराल बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चुटकुलों में एक बार फिर से। आइए अब आपको सुनाते हैं गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म। अनवी दत्त ने इसको लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। शेखर रविजियानी और सलीम मर्चेंट साथ ही मोहन की आवाजें हैं।

0: तनाव सरार इस्म से गीत भी आप सुन रहे थे राहत फतली खान की आवाज में समय अंजा के बोल थे तर्ज बना थी हिमेश रेशमिया ने
1: जैसे आप जानते हैं विविध भति हर ने करता है अपनी एक महफिल सृजन भति इस बार सृजन भारती लेकर रहा है लोक संगीत की भी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलस्ता और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवास ले बोरीवली पश्चिम मुंबई प्रवेश बिल्कुल मुफ्त आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए
0: मलिक और मोहित चौहान की आवाज़ में एक था टाइटल फिल्म से ये गीत कौशल मुनि ने लिखा है और संगीता है सुहेल सिंह ने

एक था टाइगर। इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाज़ों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आप सुनवाने जा रहे हैं शीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से, ये गीत जिसे गा है श्रेया घोषाल। अमिताभ बजारिया का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म में श्रेया घोषाल और मोहित चौहान गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है AR रहमान।

0: शख्सियत।
1: रंगज में कुछ कम 10 साल जयपुर में थीट किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारी परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वंद था। उस टीम का आपने इसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और सर करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से
1: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति राउडी राठौर फिल्म देशोया कुराल और जावेद अली कलया गीत मीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत।

रजीजा ठोर फिर से शोशाल और ज्वेदली काया गीत में सुना समीर के बोलते अजित वाजिद का संगीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चलो अब यही संपन्न होता है। आ दीजिए नमस्कार। श्रोताओं आपको बताएं कि 9:30 पर सुबह यानी अब से कुछ ही देर में और पुनः रात को 9:30 पर आज की इफ्तार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। कार्यक्रम सुनना नहीं भूलिएगा आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेसाल हस्तियों का अमूल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में है और मुझे नई नई चीज आने का बड़ा शौक है।
0: हल अजीज गायिका आरा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार प्रायोगता में अपने आप को ढाले हुए।
1: आप याद होगा श्री मंजिल एक गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा था वो याद है वो? आजा अब तो आजा आजा ये करना मुश्किल है, इन्हें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी गाड़ी में, ड्राइवर ने पीछे मुड़ कहा साहब आप कुछ तकलीफ है क्या, क्या हुआ आपकी तबीयत है ना तो मस पड़ी, मैंने नहीं तू गाड़ी।
0: ऐसी अनमोल याद आपको मिलेंगे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन गीत।

बताओ नमस्कार आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहिए। फिल्मी हीरो या तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करने का काम किया हमारे आज फनकार ने, जिन्हें ये दिखाया कि आपका अभिनय आपको किस भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिन्हें अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

0: आज जिस वाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हैं उनके पीछे छुपे सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक मिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।
1: एक

मसले में देखते हुए लगा कि वो भी अभिनय जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन मन यकीन हो गया कि अब की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD हर दिन उनके खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख मोड़ दिया। नवाज समझ आया अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएस के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने मुश्किल भी दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी अपने लुक और पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं था। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से पकती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के पैसे की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप ले शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शो में अभिता रणवीर सिंह नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। तब से पहली बार फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में आवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन फिल्मों में छोटे-छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं चूल, जंगल, मुन्ना भाई एमबीबीएस, फैमिली, आजनचले, एक चांस की लास्ट कल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम नहीं होते। साल 2007 आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदार में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो से नहीं आया जब लोग उन्हें उनके नाम से जाने। इस बीच साल 2011 में फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका, उनकी अभिनय फिल्में तो नाम कमा ही थी और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे और देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को फिल्म देख इंडियन सर्कल, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 कहानी और ताश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से उन्हें अलग अलग फेस्टिवल के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। एक ऐसे अभिनेता रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखते हैं। वो आज भी कई ऐसी फिल्म करते हैं जिन्हें फिल्म शो में सराहा जाता है।

वो समय चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदार को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर कहा गया डायलॉग बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल, किक में बोला गया डायलॉग टक से मौत को छू वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक उड़ेगा नहीं, या कभी भी लगता है पुनिच भगुन है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उन्हें जो भी डायलॉग फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खास पसंद आने लगी।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो ये मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म छोटे किरदार में वो अपनी सोच से रंग भरे हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो संवाद ही बोलते बल्कि आँखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आए हैं। ये बात

मिली वो अपनी सोच से रंग भरे हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो संवाद ही बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। ये बात उनके हर किरदार को उनसे जुड़ करती है और आप पर्दे पर नवाज को ही बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज में किरदार किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण का किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिकू रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी के हाथ में भी अपने डायलॉग्स रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके।

0: नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब ताले लगता था, नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकला कर बात करते, एक से तुतला कर तो एक के सामने वो लंगर कर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। गैंग्स ऑफ सिपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंख में ग्लीस लगाए घूमते ताकि उनकी आंखें लाल ही रहे। बलापुर में वो हंसी से ही आपको किरदार से नफरत कर पर मजबूर कर देते हैं।
1: गुम हो गया वक्त से जुड़ा था जो।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से कुछ किरदारों की बातें हैं। दशरथ मांझी किरदार ने फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल रूप नजर आया। वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्म पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी रही हो। सआदत हसन मंट के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब आखरी में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने उसका दिल जीता तो सेक्रेट गिम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी है। साल 2025 में आई फिल्म कोस ऑफ फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाजते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया के चकाचौंध और ऐशो आराम कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों सम्मानित वाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई कम है, और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतर अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तब आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं हुई कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आप सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निष्ठा उनके मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले आवाज़ुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध आलिख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजरी कामली। अब दीजिए इज्जत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना कि आज जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका हमारा हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी सच्चाई नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी परिवार, सुकून भरी जिंदगी सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की विधि पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही है। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई अटके की पारी जिसमें खुद को समय का वक्त शुरू होता है, शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत।

बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं? यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए? ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं, और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए, और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही। लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी की बोल एस जी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटकेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में किसी भी चीज को हम नहीं देखते। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियां, शैतानियां और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। ये एक ठहराव है, परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है। और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात।

आपने लिखी है, तो जन्म से लेकर, हमारे कौशोता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब उस सब बचपन फूलों सी हंसी संगी साथी सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है। शैशव काल की मुस्कान किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना अति परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम बढ़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्ता तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत। वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और लिखते हैं, स्मृतियों के झरोखों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी अभी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश किवोल और सचिन देव वर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी है और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा है को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहाँ पे पतंग लेने ना गया हूँ। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है, हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये। मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था। वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई और शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पगिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा किए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

0: बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडिया मार पड़ेगी इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नजदीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल ही गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होते हैं, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं है हमारे।
1: राजश्री आगाशे राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 90 पैसे वाढ, 5 देशांच्या दौऱ्याच्या 4th टप्प्यात प्रधानमंत्री आज भारत नॉर्डिक शिखर परिषदेत सहभागी होणार, छत्तीसगडमध्ये जगदलपूर इथं केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्य विभागीय परिषदेची उच्चस्तरीय बैठक सुरू, भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण किंवा निर्बीजीकरणानंतर सोडून द्यावं ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली, आणि माजी केंद्रीय मंत्री आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खांडुरी यांचं निधन। पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आज प्रतिलिटर 90 पैसे वाढ झाली। एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीतली ही दुसरी दरवाढ आहे। दिल्लीमध्ये आता पेट्रोलचा दर 98.64 रुपये तर डिझेल 91.58 रुपये, मुंबईत पेट्रोल 107.59 रुपये आणि डिझेल 94.08 रुपये, कोलकाता इथं

दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशोता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे और सबसे सब किसे कहते थे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, चक्कर में कई बार मार भी पड़े, ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में, हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करती थी, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया, बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीजन से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं, हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं, बताइएगा इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर। और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

0: हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: चिक चिक बम बम बम, चिक चिक

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ सुरीला सफर में। सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी पर्दे पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है। हम

के परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए, हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहां सब कुछ बदला सा मिलता है।

परदेश में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिसकर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

0: जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थलीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसे

0: स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कलमौन विभाग रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के संगीत के साथ।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद आए बहुत

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती है धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
4: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
5: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
6: साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
7: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
0: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है।
0: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
0: योग्यता
1: है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
0: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
0: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी, शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और दोनों के मुंह से। वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना। और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत
0: धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
0: क्या बात है,
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और

0: दिशाया है आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना यह मुहावरा अक्सर घर की किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है उसको हम यह बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं या यह जरूर कह सकते हैं कि यह मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है तो बिल्कुल सही कहा आपने जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना नाराज हो जाता है तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है क्यों नाराज हो रहा है ना
1: ये माँ जो है ना हर माँ के मुंह की बात है उनके जुबान पे ये शब्द आता ही एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है वाक्य प्रयोग हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है उन्होंने उदाहरण लिख कर भेजा है वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं फिर वो छोटा बेटा हो मझला हो बड़ा हो बेटा हो या बेटी हो सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं
0: बात तो बिल्कुल सही की कही और अब क्या लगता है आपको हम देखते हैं कि हमारे पसंद जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा या

0: सुना ली। मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़े आप, जैसे कुछ भावनात्मक हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं पांच बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं मम्मी की आंख का तारा था।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जो बच्चे होते हैं माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं, क्यों इस तरह हमारे पीछे क्यों पड़ हो, या क्यों हम हमेशा लिख देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना थोड़ा सा खा लो थोड़ा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम जला के उनको कई बार
1: गुस्सा हो जाता है
0: और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती, लेकिन उनकी आंखों का आरा बनने में हमारी कोई कमी होती, उनके लिए हम सी बने होते
1: वैसे नहीं होते। और फिर होता है कि एक वक्त बाद हम ऐसा, अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुख दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं। माँ हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जाओ, पर हम जाते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और कभी
0: कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती है और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक में ना कहते हैं ना हम ऐसे की पछतावा होने लगता है,
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में तब तो और भी बुरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल

0: सोनाली, आप क्या बात करती हैं अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना, जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीप। जब हम मन की कहते हुए बोल देते हैं कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पता हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खुली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भाव पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के प्रेरित करता है, लेकिन जब लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना, तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को तो बदला नहीं जा सका सुना, लेकिन जो वर्तमान है आज है उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात के ग्लानि अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों अपना खुद को मुक्त कर सकते, जैसे गलती को स्वीकारना। अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हुई है। गलती को पाने या उसे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही। और माफ मांग सकते हैं, सुधार सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सी माफी मांगनी चाहिए। यदि सब हो तो नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकें, और ये कर देखें आपके मन को बहुत ही शांत देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोच ले जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें, इसने गलती की न, खुद को ही बुरा इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय बहुत इंसान हूं, इस तरह की बातें भी कभी भी निकल आती।
1: और ऐसे क्या होता है, निराशा खाई में ही गिरे रहते हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से गड़ जाता है, बीमारी का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देख, सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान की गाड़ी देखिए ना, अन्य चिंता वर्तमान खूबसूरत हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा आज सुधारने संवारने में बिताए, सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गलतियों से ही बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को उसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। साथ ही लिखते हैं, अपराध बोझ से बिना जरूरी खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना

0: नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह एक और संत कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे अपराध जानबूझ करके नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बना रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से मान लेना ही समझदारी है, नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोझ से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई को आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। एक और साथी ने लिखा है, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद ना प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथी लिखी है।
1: भाई देखो दिल बात किसी को कह देने ही, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हम कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो आप अपने दिल की किताब कहीं खो देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हूँ।
1: जी, हमारे एक सख ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध कर अपना आत्मविश्वास खो बैठ। हम इंसान, हमसे गलती हो सकती है। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जी, बोझ कर नहीं जी। वही साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ काम कर दिया था कि मेरे घर के, मेरे दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर मीने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी होती थी तो मैंने बच्चों को उठ के कहीं भिजवा दिया।
0: अच्छा।
1: बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध ग्रस्त हो गए थे, उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चे मिला दिया है तो इससे ज्यादा खुशी जितने आज है ना, ये सुनकर, ये पढ़ के आपका संदेश हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई का परिणाम देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पड़ जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता
1: है। होता है ना, दिमाग उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए तो खासकर लड़कियां क्योंकि अब लोग बोलना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा लगता है कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, हमें भी सिखाया जाता। लेकिन हाँ, कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता की एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो कर ही आए या कर ही आएगा, तब और ला पाते तो कहीं मन में वो कसता है। लेकिन भाई अगली बार मेहनत करें, हम उसको बढ़ा भी सकते, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें ही समझ आ। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश, परिणाम उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मां जरूर पड़ी लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी, तो देखो मम्मी तो यहां भी कमाई
1: का तारा होते बच्चे।
0: इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, मार तो कभी मिल पार, हमारे जमाने तो परीक्षा परिणाम के बारे में तो फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ा नहीं था, पढ़ाई हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं।
0: क्या बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी को जिसका भी रिजल्ट 1-5 के बीच में रैंक में आता उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीन भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यही कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मैंने रखता था, बिल्कुल रखा था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और ये 100 रुपए इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात नहीं तो बता कि जूनियर हाई स्कूल पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला जब मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर दो नाती अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 मिल जाए तो कहते कि भी एक पर्सेंट कहाँ चल गया।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ाता है।

0: भले ही हम कितने भी बड़े जाएं लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना वो सबको याद रह जाती है। भाई बिल्कुल सच बात, एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुश कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा गई होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं कहीं हो गया है, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते तो लगता था कि तो बस धरती फट जाए और उसमें समाज और पागा ये डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मम्मी का डायलॉग रहता सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि महतरंग लाती तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज ये ताजा की होगी।
1: तो सुन ले जी।

0: सखी ने लिखा है। हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, स्कूल होने चलते हम आसपास बच्चों को पढ़ने के लिए एक शिक्षक आते थे जिससे हम भी उनके साथ बैठ पढ़ते थे। उसमें एक बच्चों का नंबर कम, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उन्होंने सुन लिया, बड़े कड़क के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताई इतना दीजिए जामे कुटुम समय नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्हें कान पकड़ बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में हो कम हो जाएगा तो बहुत हा करते हो।
1: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बहन ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए, मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यासी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है लेकिन आजकल वो बड़े प्यार दूसरे बच्चे के स्टेटस दिखा रहे हैं हमें, और कहती मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आप वादा किया है तो आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको एक गिफ्ट देना होगा।

0: कौन सा संदेश पढ़ने का कही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परम चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे, परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं। क्लास फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था, मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनुकूल होता था। क्या बात, बहुत अच्छी बात लिखी। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था, नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी 58-54 मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी है, अगर कुछ कहे तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आए तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो बड़ा ही अपमानजनक होता था। भैया हम तो ना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाएं।
0: सही बात है। और एक और संशय कहता है, परिणाम परीक्षा बात चली तो बता दें जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था, वे अपने जमाने में उर्दू संस्कृत अंग्रेजी पढ़ाते थे, आगे पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा, पास भर होने का मार्क लाता रहा, बीए के सिलसिला चला, और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते में देख घूमने जा, शादी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाते अपने परीक्षा परिणाम को लिए चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए और एक 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखे संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना
0: चलो।

0: आज हमारे श्रोताओं के जो इतने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिलाए हंसे तो बार तो मैं आंखें छलक हंसते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेलुलॉयड के सितारे कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध अर्शो गायिका मलबा रोड से। आपसे बातचीत की है कम शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त दामन थमकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सिलोएट के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी करिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंच रही है। या दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारो का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विद भारती स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में इतना प्यार बुला है, इतनी मिठास बुली है कि वो

0: आपकी जर नवाजी है, आपका प्यार है।
1: मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल नवाज है कि वो प्यार जो है पहुँच गया हम सुनने वालों तक। अब कमल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
0: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ इस टैफका में, टेनानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर संगीत का मोल था ऐसे समझ लिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, लगाव नहीं था। तो वो कहते ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पढ़ के मैं कहती मेरा गाना सुनो, जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था, सारे का कुछ पता नहीं था, तो ऐसे आती थी। और उसमें से मैं साइड मेमोरियल कॉन्टेस्ट के चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के और वो मैं कॉन्टेस्ट थी, वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हमने के जैसे किसी मंत्र दीक्षा दी जाए ना, कान हौले, वैसे ही संघ की पहली जो दीक्षा थी मनो की, वो तो आपको घर में
0: ही मिली, बिल्कुल ही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर शुरू हुआ।
0: जी।
1: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये यात्रा या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और हाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी गुरु रहे?
0: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि कॉन्टेस्ट जीती, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते पब्लिक में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद हमारे फैली फ्रेंड है और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, कल्याण जी आनंद जी नेट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि भवन में ये प्रोग्राम हुआ तो मेट्रो तक है ना गाड़ी की, लोगों की उस जमाने की थी। उस प्रोग्राम में जय मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिला।
1: अच्छा।
0: और लता जी भी वहाँ थी और उन्हें ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम में इन्वाइट किया, एंड आई वॉज एन आर्डेंट फैन लता मंगेशकर। मैं देखो इतना चाहती थी कि जब भी मैं आई थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार से संडे में उनके घर चली गई तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए और तो उन्होंने कमल जी को सुना है मैंने इससे गवा लो ये ड्यू गाना है आप यकीन माने। वहां से कल्याण जी भाई म्यूजिक हॉल गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
1: वाह वाह भाई, ऐसा
0: कैसे कहां इस बात, देखिए
1: आपने गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां, लेकिन ये है कि जब जब इस गाने हम सुनते हैं तो लगता कि गाना वाकई दिल ले कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
0: तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और यहाँ से एक किस्म से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिल को छुए और उन पर दर्द दें।
0: सही है।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम खड़े हैं यहां,
3: क्या है तुम्हारा

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और संयोग से और अचानक आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सप्ताह हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है, कैसा आप महसूस रहे थे और आपको के जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स, ऐसा लगता था जैसे एक हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन में गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी बैठ के गाना, तो वो समझ गई, वही सहेली दीदी थी, सहेली भी थी। तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने साल के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, आखिर मुझे छोड़ना जाना बराबर की लेनी थी। और म्यूजिक भी, म्यूजिक हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: को कुछ छोटी सी ताने भी करवानी है क्योंकि मैं मेरे कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था तो इतनी दिलचस्पी आप बताइए आज के कौन ले सकता है इस सब की का क्या भाव है क्या तो गाने में सुना ऐसे सुनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बने हैं तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ये था
1: जी, इतना पेशेंस रहते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक हम जितना तराश सकें
0: और इंग्लिश में कहते हैं ना पेस थोड़ा स्लो था जिंदगी का पेस मत था एक ना जिंदगी का कहते हैं ना हर चीज डिस्कशन वो लेवल रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी फिर स्टूडियो जाते थे वहाँ म्यूजिशियन के पूरा आना खड़ा रह के आना
1: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है
0: जी जी
1: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे कितने दिन तक हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है गाने के बारे में बताया है
0: जी कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते सज्जा करके वो बहुत कड़क माने जाते और उनको बड़े बड़े सिंगरों को जो भी आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी तो मैं तो नई थी मैं तो चाहती हूँ मुझे रिहर्सल कराए और रिहर्सल होता था बकायदा होता था
1: तो चलिए इसी बात पर एक हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना दादियों मातियों मां मान जाओ

0: भाई कमल जी, आपने इस बहाने के जरिए दादी अम्मा मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि दादी माँ उठी है तो
1: कैसे मनाया जाए कि नहीं।
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक बात आप बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया आशा मेरी बहुत अच्छी सही है, रिहर्सल के लिए साथ में गए, तो मैंने ऐसे मजेदार वाक्य सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडे आना है अपना अहमदाबाद में, एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहते सब कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं ले जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं। मैं कहा तू क्या चल सकती, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब जानेंगे। कहने चलते हैं, मजा आएगा, मैं कोटा बन बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, जब इतनी बड़ी कॉलेज फंक्शन में मैं आ रही हूँ, मेरी किताबें बैठी हैं। अब वो आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार, और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसी चुपचाप बैठी रही, मुझे हंस भी आए और मुझे बोलती रही चुप बोलो बोलो मत। तो उतने में गुजरात बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्हें देख के बोले अच्छा तुम यहाँ, फॉरन प्रिंसिपल सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी दोस्ती
1: अभी भी कम है? अच्छा। जी हाँ।
0: तो अब जब आप आती हैं, तुलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो
1: बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मेरी भाषा तो की गुजराती
1: जी
0: है। लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी की बात हो रही है, हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गाया है?
1: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाया, फिर ना भोजपुरी, पंजाबी और गुजरात फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अच्छा
1: जी हाँ, फिल्म नहीं थी लूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय दिया था और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बचा था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, यही नाम शुरू हुआ था ये ना।
0: लेकिन इसे आपने तो प्यास जगाई और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, बहुत अच्छा,
1: अच्छा लगा।
0: और देखिए ऐसा है कि मीठी मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गाने
1: बहुत शुक्रिया
0: हमेशा खुली। कमल जी से कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार के गायक की आवाज एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में कहेंगे?
1: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है जब सिचुएशन गायक लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैकोज हैं तो ऐसे राग का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार ला सके, और जब वो गाना बन जाता है तो कलाकार सामने रखा जाता है फिर प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से ना लिखा गया है उसका मकसद पूरा हो जाए और आना चाहिए, तभी के गाने की सफलता हो सकती है।
0: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते थे?
1: शुरू में हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी और शायद वो क्वालिटी एक क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब और थोड़े दिन लिखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कर्ण का एक अभ्यास करा कि जो आपके मुलायम होती है उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताजी अहमद खान साहब जो कि वकीलों के बड़े माहिर थे और कल्याण जी का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिक सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए खास रियाज चाहिए, तो कभी मेरे रियाज आके वो बैठते थे। तो ताजी अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई और इन ये सब, और उसके बाद गुरु आए उन्हें भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खास गुलाम मुस्तफा खान साहब, तो इन के आशीर्वाद से वो कुछ पाया हमने, वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाने से आया था कि मैं शाम को उनके

0: को एंटरटेन कर रही थी और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप को 7 बजे गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का. गाना भी बहुत अच्छा था, आज ही गाने वाली थी.
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं उन बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना. तो क्या है ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हक तैयार रहो, वो मूड बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ और सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता. वो गाना हुआ आज हमको हराए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है. और यह गाना मैं यहाँ स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड बाद गाने बजाता है ना तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी.
1: मैं एक सवाल हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे लेकिन लग रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए. वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद गाने के लिए आपको मतलब अकार को कितने पे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते उस जमाने में. जब लता जी को 500 या 600 मिलते तो हमको आधे मिले थे और खुशी हम ले लेते थे. और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया. एक मेरा और आशा का ड्यूट था और हम ड्यूट ज्यादा गाए हैं तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल में है ना. हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए. आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं अहमियत इतनी नहीं थी, निस्बत के गाना था मिले.
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जो बात कर, मैं सोचता हूँ कि कलाकार में आपकी क्या सभी की मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी. तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए हुए?
0: मैं तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं.
1: अच्छा
0: जी.
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा तेना टॉप पे रहा काफी दिन तक. और यही नहीं, जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना. जैसे लंदन गई मैं, इंग्लैंड गई, अफ्रीका गई, मैं जिम्बाब्वे गई, कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है.
1: और चूंकि आप कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए, ये गाना भी बहुत पॉपुलर है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सही है.

0: लक्ष्मीकांत पिलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली और आज भी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाज की होंगी?
1: उनके साथ ये काफी गाने गाए और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रहा है।
0: देखिए उस जमाने का ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते तब गाने देख लिया करते और सुन लिया,
1: बाद में रेडियो पे सुना करते थे।
0: तो वही मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने, लोकप्रिय करने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आप बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी, रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिली। कैसे? जब मैं ये आप शुरू में कर किया कि मैं सल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और इंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उस हमें बुलाए, उन्होंने काफी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही दूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। हाँ, तो रेडियो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कौर?
1: एक्सीडेंटली हुई नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयार करके आती, लेकिन मैंने ना, तो मेरे पास क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरी जिंदगी शायद गायिका बनना था। और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या मैं चाहेंगे
1: आप की तरह से कहूँगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आप जबकि सक्रिय पार्श्व गायक से प्लेबैक सिंगर से आप करीब करीब सांस ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ नहीं सकती, मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बन रही हूँ नई ज्वाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है?
1: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट किया है और कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा
1: है? हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है चंद्रा बारो, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रिमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उसे बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसमें एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था तो किशोर देसाई इसको उसबत किया है, हसरतपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जंतूर बजाते हैं ना शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने

0: कमल अरुण जी पूरी दुनिया में फिल्म बनती हैं
1: जी,
0: तो पूरी दुनिया घूमती
1: जी,
0: और फिल्मों में की संगीत एक बहुत अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है, कल्चर में, हेरिटेज में, फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो, अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का लो, आप नॉर्थन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह ना जाता है, कुछ तो कुछ है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना, गोपी कृष्णा और तारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में। 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई, और उस समय में इतना हंगामा बॉम्बे हुआ, तो जो अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौ साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए, और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करा और उसका कोई अनुसरण था, तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के मायने मेरी गाने की, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाई, फैज अहमद इसकी रचना। और बोल है, आज यू मौज दर मौज, गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत अच्छा लिखते थे और उनके लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महल में बैठते थे या कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर को कहते थे, आप फिल्मी कथाएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा रखी है वो कभी आज निकालिए और हमें सुनिए। और वो आप तय करेंगे, ऐसे ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती है। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़े थे, उनके पास इतनी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आप ये जानना चाहूँगा, क्या खाली वक्त में भाई संगीत का आनंद आदमी को ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला गीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उस जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसे जो ढल प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और त्रुटि नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपन का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों को नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बैरूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद है?
1: कभी कभी 3-4 गाने दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैं भी इतनी मतलब लोग कह रहे हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके दो ने यहाँ, और गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, केशी थे, और मैं फिल्म थी, मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मण प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे ये हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, वैसे कमल जी मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गाए उतने अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया केज का कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर वो इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आज शुरू की, तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप इस
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया? मैं मॉरिश गई थी तब, मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आप लोग जो मॉरिश जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल डांस पार्क का शो, ये कैसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा 6 महीने शो की तैयारी होती थी। आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, हमें वो आर्टिस्ट स्टेज पसंद करके रिहर्सल करके फिर उसी पॉपुलर बने की रिहर्सल उन पर आके वो गाने हम वहाँ पेश करते।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से रही हैं।
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को, फिल्म
1: को रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो ने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, फिर अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम वेस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: कैसा रिस्पॉन्स रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और जो स्टेज का जो एक ऑप्शन है ना, मैंने आपको बताया मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को ले गई थी, और उस समय में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति ने कि लाइटिंग के साथ, उस वक्त नहीं आया ये सब, आजकल तो कहां बात लेजर और सब पहुंच गई है, हमने इतना अच्छा शो बना था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नाम लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का, और यश प्रा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक इच्छा है स्टेज का, इच्छा है अच्छी चीज पेश करने का, और आगे भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज ना।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पिता का जिक्र किया, मैं जानना चाहूं कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से वो कलाकार हो, तो

0: ऐसे जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी अल्लाह को समझे और उसको कदम कदम पर सलाह का सपोर्ट करे, वो जिस फील्ड में उसमें आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो इच्छा है उनको सराहा है, और इसीलिए ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने में रहती हूँ। इसका यही कारण है, वो कहते हैं तुम एक कलाकार हो और ज्यादा दिन भर नहीं रह सकते हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ है कि हमने सारी कहते ना एक्टिविटीज रखी, अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक है
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या फुल स्क्रीन पे करूं, खुद गाऊं। अगर आप साथ देती हो तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मन को एक कहते हैं ना मिले।
0: तो बताइए मुझे, आपने अपनी बात में जिक्र किया बार ये जगह का
1: जी,
0: वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग ईटी बहामा छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ जो हमारा समुन्द्र है, नीला पानी, सफेद पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, एक खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी, फिल्मों में तो आप गाया ही, लेकिन अश्वगायन से हटकर के गैर फिल्मी रचनाएं भी होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे ने गाए हैं, मैंने पहले तो यहाँ ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला एली म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो एलपी नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैं थोड़े कुछ 8 साल पे एक एल्बम डाला था आदाब, जो शेखर ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना सुनाइए, और बोल है निगाहें नीच किए

0: कमल जी, मैं जिंदगी में पुरस्कारों का, प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं। तो आपको पुरस्कार मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत किस्मत हूँ। मेरे ख्याल गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे शील्ड मिली और वो एक किस्म था। फिर सुरसार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने मेहर कपूर के साथ एक क्लासिक ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट 2 कंसेक्यूटिव इयर्स बेस्ट प्ले विक सिंगर का है, वो मिला।
0: अब ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव का है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगे, एक बात मन में रह गई हो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहते हैं?
1: जी जरूर, ये कहना चाहूँ कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार आप दीजिए, तो शायद कुछ और गाना मेरा दिल करे और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या थे? इस तो आपके किसी गीत में कोने को जाता है।
1: बॉम्बे में जब भी मानसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता और वो गाना है गरज बरसत सांग आयो।

0: बरोड़ जी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, खूबसूरत, दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं करते हैं आपके प्रति। जो सक्रिय आपने कला के क्षेत्र में अभी बनाए रखी, वो इसी तरह से बनी रहे और इस तरह से आप सफलताएं मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्यूलॉइड के सारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था मकराव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुन।

की अब जाते हैं। विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम का एक मुकाकाशी रंगमंच पर 21वीं शाम 6:30 पर लोक संगीत और दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर ताकाश ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद और अपने दोस्तों को लेकर आए।

ये दिल जो गमगीन हुआ था और ये नजरें भी तो खफा हो गई। लो भूल जाते हैं वो बातें कल की और करें एक शुरुआत नई।

कैसे बताएं कि जो मोहब्बत खिली है हमारे बीच वो कितनी है, चमचमा रहे हैं जो आसमान में, गिन लो उन्हें, ये बस उन सितारों जितनी है।

0: विविध भारत से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तुझे दिखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैं, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

बोल दिए हैं अकहे बोल, बने लगी है मोहब्बत की सरम, कैसा इत्तेफाक है सज ही है उम्मीद की वदियां, और बस गई है अरमानों की बस्तियां, ये कैसा इत्तेफाक है।

0: ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुई धड़कन, तराने नए पुराने लेकर आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: आता ऐकारा होत युवकांसाठीचा कार्यक्रम युवावाणी।

0: आताच आपण युववाणी हा युवकासाठीचा कार्यक्रम केला. ही मुंबई केंद्राची निर्मिती होती. आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही अस्मितावाही आहे. 537° अर्थात 558 kHz. आमचे कार्यक्रम AIR मराठी DTH उपग्रहवाहिनी तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरही ऐकता येतील. यानंतर ठीक 6 वाजता आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून हिंदीतून बातम्या आणि 6:05 इंग्रजीतून बातम्या प्रसारित होतील. त्या आम्ही सहक्षेपित करू.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ. सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं. बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है. इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी. भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के फिलहाल व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है. सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है. नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $9 अरब के करीब पहुंच गया है. सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित क्षेत्र वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा. सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रस्टेड आईटी, फिनलैंड प्रधानमंत्री चेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. प्रधानमंत्री मोदी 5 देश की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे. मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत रहेगा. ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गति मिलने की उम्मीद है. व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की खोलने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं. व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है. भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे. यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है. इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बन उभरेगा. छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है.
3: 19 मई 2026 की ये तिथि है जहाँ से प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है. बस्तर के 7 जिले नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए.
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानून मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबे मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गए. उन्होंने बताया कि EPFO व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा बढ़ाया जा सके. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल

संगम पर ये गीत मोहम्मद रफी आवाज में अभी आप सुन रहे हैं हसरत जयपुरी से लिखा शंकर किशन की धुन

0: कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। इस संगम के इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम ही समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

ये है विविध भारती की सूरी धड़कन। जरा मिली जिसमें आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे भक्ति प्रोग्राम संध्या रंजन 6:35 से। 6:45 से संगीत सभा में आप सुनेंगे श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार गायक अंजलोटा, प्रस्तुत अनीशा जैन। इस कार्यक्रम का 8वां भाग आप सुनेंगे। 7 से फौजी साथियों के लिए लेकर जयमाला 7:45 से इंद्रधनुष अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। 8 हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका प्रेम दीवाना, लेखक ब्रजभूषण, निर्देशक पुरुषोत्तम वारवेकर। 8:15 से चित्रलोक और 9 से कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार आज केंद्र होगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। समय 9:30 से 10 छाएगी और 10:30 से ढलती जाए रात। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। कल सुबह के समय 5 कार्यक्रम जागो सुबह हो गई आप सुनेंगे। 6:05 से वंदनवार और 6:35 कार्यक्रम श्री रामचरितमानस का भाग 194 आप सुनेंगे। संगीत सरिता में श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार गायक अंजलोटा, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। इस कार्यक्रम का 9वां भाग आप सुनेंगे। समय सुबह व शाम 6:45 से। भूले बिसरेगी 7 हमें राही पर के 7:03 से। आज के फनकार सुबह व रात्रि 9:30 से। ये कार्यक्रम आधारित होगा अभिनेता गिरीश कर्नाड पर। दस बजे से 12 में सेलुलॉइड के सितारे में पार्श्व गायिका कमल बहुत से कमल शर्मा की बातचीत आप सुनेंगे। प्रस्तुति शकुला पंडित। 12:05 से यादी महफिल। 1 से सीला सफर। 2:30 से समय होगा सदाबहार नगमे का। 3 से सखी सही में चर्चा होगी विश्व मधुमक्खी दिवस और भाषाओं से जुड़ संस्कार। साड़ियों का संस्कार, तचोई साड़ी के बारे में जानेंगे। शुद्ध हमारा विचार आगे में सद्भाव और ठेकुआ और दालीट व्यंग की चर्चा होगी। 6 पिता में आज के मेहमान में सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेनानिवृत्त केंद्र निदेश राजेश रेड्डी से बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। शाम 5:30 से तराने नए पुराने। 6:30 से संध्या रंजन और 7 जयमाला आप सुनेंगे। कल 7:45 से

इंद्रधनुष के अंतर्गत होगा राग अनुराग। रात 8 बजे महल में सुनिएगा प्रहसन खरीदा हुआ दुख। लेखक शो रस्तोगी और निर्देशक दुर्गा मेहरोत। 9 बजे से आप लिए रोखा में आप अभी सुन रहे थे आज शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं मनी मनी गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत किए ममता सिंह ने। आज सुनते हैं श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार, विभारती के स्टूडियो में आज सुख की वर्षा हो रही है। हमारे साथ हैं अनूप जलोटा जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद।
1: भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी, और हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनके तमाम भजन लोग पसंद करते हैं, गुनाते हैं, गाते हैं। हम उन्हें पूछ रहे हैं कि उन्हें किन गायकों के गाए भजन पसंद आते हैं, और उन गायकों के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को कि गाए भजन गा के हमें सुनाएं।
2: भजन सबने गाए हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने भजन ना गाए। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो भजन है वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है, कि जितने भी शास्त्रीय गायक हैं वो बंश गाने के बाद में आखिर में भजन जरूर गाते हैं, चाहे वो पंडित गंगानाथ ठाकुर हो, चाहे डीवी पलुस्कर जी हो, चाहे पंडित जसराज जी हो, या भीमसेन जोशी हो, या किशोरी आमोनकर जी हो, सब भजन गाते। गजल भी नहीं गाता अपने प्रोग्राम के एंड में, का मतलब गजल जो है वो क्लासिक म्यूजिक का अंग नहीं है, लेकिन भजन है, नहीं तो क्यों ना गाता, लेकिन सभी गाते हैं। तो भजन डीवी पलुस्कर जी ने गाया, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, जो आज तक लोग गाए।

0: भीमसेन जोशी जी, उनके भजन गांव-गांव में गाए जाते हैं
1: जी।
0: लोग अपने कार्यक्रम को उनके भजन से ही समापन करना पसंद करते हैं।

सुन दर्द भए मेरे नाले। मुकेश जी ने बहुत खूबसूरत भजन गाए, कुछ भजन श्री रविंद्र जैन जी कंपोज किए। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया,

ऐसे कंपोजर उन्होंने बड़े सुंदर भजन सर गवाए, श्याम तेरी बंसी, रविंद्र जैन जी।

तो ऐसे कोई गायक हैं ही नहीं जिन्होंने भजन अंग को न हुआ। इतने प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह साहब जिन्होंने गजलों को अमर कर दिया, उन्होंने जब भजन गाया

0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बस आंखें बंद करके सुनते रहे और अनु तिलोटा जी हमें भजन सुनाते रहे, ऐसे ही लगा। एक सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ध्यान से सुन रही, नई पीढ़ी एक अलग तरह के संगीत और संस्कृति में गुम है, ऐसा क्या किया है? अनूप जी आप बताएं कि भजन की ओर उनका रुझान उन्मुख हो।
1: बस ऐसे भजन गाए जाएं, ऐसी लागी लगन जैसे।
0: क्या बात है,
1: हे राम हे राम जैसे, शाह तेरी बंसी ऐसे, तो ये जनरेशन सुनने लगेगी। लेकिन बहुत मुश्किल आएंगे तो नहीं लेंगे, तो कोशिश यही जाए कि सरलता सुगमता सामने आ जाए तो सब उसे प्रेम करेंगे।
0: अब अनु जी चलते आपकी किसी भजन का मुखा हमें सुनाएं।

0: राम नाम अति मीठा है। अनु जी आपके गायकी के माध्यम से हमारे श्रोता अपनी आंखों से देख रहे हैं ये चित्र आपके शब्द चित्र के जरिए। और अब वही घड़ी गई है जब हम मापन करते हैं, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये कड़ी। कल फिर मिलेंगे संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ। सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: लागी बेल, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगकर ने, तभी पर संगत आयुष झा की है। कल सुनिए श्रृंखला की अगली।
3: विविध भारत के सराहले से आप इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: दिल्ली राज्य सरकार से चार कंपनियां सामंजस्य करार 25,400 मेगावाट अणुऊर्जा 130,500 रोजगार निर्मिती अपेक्षित पेट्रोल आणि डिझेल दरात प्रति लिटर 90 पैसे वाढ आणि माजी केंद्रीय मंत्री आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भुवनचंद खांडुरी यांचं निधन. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया रात्री 8:05 आकाशवाणी मुंबईच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 7:10 झाली आहेत. यानंतरचा कार्यक्रम 7:15 प्रसारित होईल. श्रोते हो, मुलांना शिकवणं हे मुळातच उघड काम असतं. त्यातून ती मुलं विशेष प्रकारे असतील तर त्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाबरोबरच सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना आणि समर्पित वृत्तीनंही गरजेची असते. कर्णबधीर मुलांसाठी शाळा चालणाऱ्या वैद्य यांच्या संवादातून आपल्याला हेच जाण.
2: माझ्या देवाकडे ही प्रार्थना आहे की आम्हा जेवढी अंगात ताकद आहे पर्यंत आम्हाला ही अशीच मुलं घडवणे ताकद देव आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर जे आम्ही हसू म्हणू शकतो त्यांच्या पालकांवर जो चेहऱ्यावर आनंद येत तो आनंद असाच त्यांचा टिकून
1: राहावे. वर्षा वैद्य यांची मुलाखत मंगळवारी 6 मे रोजी दुपारी 12 मना मंडळात अस्मिता वाहिनीसह महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांत तसंच न्यूज ऑन एअर ऍप वरही.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी सफलताओं की, कहीं विरासत की, उम्मीद नए भारत की. महीने आखिरी रविवार करता है इंतजार हिमाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगरक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के स्तार तक होती है मन बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनल पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सकते हैं रात 8 आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात. मन की बात है जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
4: सांगारे मित्रांनो कसे आहात तुम्ही. कान देऊ ऐका माझी कहाणी. भूमाचा संदेश घेऊनय मी आता ही बदलणार कधी. भूमाते काल मी भेटायला गेलो तिच्या मनची वेदना मी सांगायला गेलो. तिच व्यथा तुमच्या समोर आलोय मी घेऊन आता नाही बदल तर जाऊ डुबून. तराई माग

0: मुलांना शिकवणं हे मुळातच अवघड काम असतं. त्यातून ती मुलं विशेष प्रकारची असतील तर त्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाबरोबर सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना आणि समर्पित वृत्ती असणंही गरजेची असते. कर्णधीर मुलांसाठी शाळा चालवणाऱ्या वर्षा वैद्य यांच्या संवादातून आपल्याला हेच जाणवेल.
1: माझी देवाकडे हीच प्रार्थना आहे की आम्ही जेवढी अंगात ताकद आहे तोपर्यंत आम्हाला ही अशीच मुलं घडवण्याची ताकद आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर आम्ही हसू आणू शकतोय. त्यांच्या पालकांवर जो चेहऱ्यावर आनंद येतोय तो आनंद असाच त्यांचा टिकून राहतो.
0: अवश्य ऐका दायित्व समाजाचे. वर्षा वदे यांची मुलाखत मंगळवारी 6 मे रोजी दुपारी 12 वाजता वनी तंडळात अस्मिता वाहिनीसह महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवर तसंच न्यूज ऑन एअर ऍप वर.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपसी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदे नए भारत की. मई के आखिरी रविवार रहता है इंतजार मलयाचल के आंच से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषा अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, हनी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार कहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
3: सारे मित्रांनो कसे आहात? मी अंदेऊन का मशी ही कहाणी भूमाते संदेश घेऊन आलोय मी. आता ही बदलणार तर बदलणार कधी? भूमाते काल भेटायला गेलो मनीची वेदना मी समजायला गेलो तिची वेळ तुमच्या सम आलोय घेऊन आता नाही बदललो तर जाऊ डुबून तर मग

जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं श्रीकांत फिल्म से। और अब ऊंचाई फिल्म से ये गीत अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में, अमित त्रिवेदी का गीत है, इरशाद आमिल ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रोक विद भारती से।

खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाज उमेर बंदर दबेंट से ये गीत अभी सुन रहे थे।

तुम्हारी उल्लू इस से गीत अब सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में और इस साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्र यहीं समाप्त होता है। यह है विभारती देश की सुली धड़कन। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित खतरनाकों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवस क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन का श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल फिशरीज, नॉर्वे की इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टाइज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेट ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन कर रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी और अर्जेंट भी और टेररिज्म पर ही हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजु राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री राव ने बताया कि ये यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखी है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इसमें भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी राजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा चर्चा हो सकती है। रोम से
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आयो बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की चर्चा करेंगे।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंस यानी आपके मान की गणना होगी। ये आपकी साझेदारी से इस सफल बनाए और फिर भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाए।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्म प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी के द्वारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी पारदर्शिता की जरूरत बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पूरा तरीके आयोजित जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर एक और ताश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी द्वारा 26 पेपर लीक मामले में जांच तेज दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाई है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकृत जनजातीय संभाग बनाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलमुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 साल के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तय किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जाए। बस्तर के साथ नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार द्वारा यहाँ करीब कर 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में गोयल ने ये बात कही।
3: That we will convert the current situation.
4: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल हुआ। दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र भविष्य आगे बढ़ेगा। कृषि मंत्री शिव सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे जांच के पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध

बाद आगे की जांच लें। उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसर यानी आपके कान की ना होगी। आइए आप साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,608 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 53 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले दो से तीन दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मराठवाड़ा, उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान निकोबार समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगे मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक साथ क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान आया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 30 भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज संक्रमित और खतरा कुत्तों को मौत इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिन क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या के अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती की रेली धड़कन। प्रोग्राम आपके लिए लीजिए हाजिर है।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। तुर कुमार की आवाज में ये तभी आप सुने थे। आनंद ऋषि ने इसे लिखा था और आदि बर्मन तर्ज थी। लीजिए आपके लिए मैं अगली पेशकश।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती करा रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी आएं और अपने दोस्तों को ले आएं।
1: विविध भारती इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोस की आवाज में, ओपी नैयर का संगीत।

0: मोहम्मद की आवाज़ तभी आप सुन रहे थे इशार फिल्म से। मधु सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तस्थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने कर रहे अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारत लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और इस कार्यक्रम का एक मुखाकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्त को लेकर आएं।

0: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ ममली अंदाज
1: कहीं पे ख्याल हो
0: सुनहरे और के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती के पास है विशाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा

0: फैसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा मैं हूँ यार तेरा, तुम्हें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें का धक्का पड़ता है वो तब जाके ये आ आ आ होता है। पर एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में, बैठ के ड्राइवर पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ क्या, क्या हो गया, तबीयत ठीक ना? तो मैं पड़ी, मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज, इसके मुस्कान पर लोग दिल हार जाए। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी ऊंचा तक ले जा सके। रोल छोटा हो बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपे है साल की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चे में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में भी और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। वहां से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहां से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाए हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NS का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीखे थे। यहाँ वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन थे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजा काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें कार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं उन्हें कभी अपने लुक अपने पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर गीत गाते नजर आए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। खुद फिल्म में काम पाने के लिए संघर्ष कहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह नाम भी शामिल है, जो फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्म पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई एमबीबीएस, फैमिली, राजा नचले, 1:40 की लाख लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता से दूर थी जिसके वो हकदार थे।

नाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान आ रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम जाने। इस बीच साल 2011 में फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फेस्टिवल में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उन्हें अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थी और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 ने जितनी पहचान दिलाई उस ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में। उनके किरदार फैजल खान ने घर में अपनी पहचान बनाई। ये वो समय था जब नवाज भीड़ अलग नजर आने लगे थे, उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। स्पेशल जूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, हानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचान आने लगे थे जिसने अभिनय, हाव-भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मार रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समझ चुका था जब नस नवाज के किरदारों को पसंद जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आ गया उनका डायलॉग, बाबा दादा सबका बदला लेगा फैजल, किक में आ गया उनका डायलॉग, तक से मौत को छूट वापस आता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपन भगवान है, ये सारे स्वाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर रखते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उन मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के छोटे किरदार में भी वो अपनी सोच रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उन किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आँखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुड़ा करती है और आप पर्दे पर आवाज को नहीं बल्कि किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर जाते हैं इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है जो नजर आया फिल्म रम राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी के हाल में भी अपने

नवाज में हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्टल के दिनों में पास के सब्जी वाले लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जब एक दूसरे दुकानदार से वो हिलाकर बातें, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाब के बेहतर किरदारों में से यह कुछ किरदार की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब अकरे में बाल ठाकरे में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला फर्क कर मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में ट्रांसजेंडर के रूप में चलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैं माफिया में उनके किरदार ने आपका दिल जीता तो सीक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद था।

नवाज कहते हैं उन्हें फिल्म इंडिया के चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई कदम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पा। वो इन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, छोटे शहरों से कम

रहेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उन मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फरार विक्रम आज केंद्र था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई होने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम प्रस्तुत करता तेज श्री मले अब दीजिए इजाजत नमस्कार
1: आज के फनकार

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने कर रहे अपनी एक महफिल सृजन भारती। बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीन खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों गुलदस्ते। और ये कार्यक्रम का एकता का ही रंग में 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने दिदास लेन दिवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह नमस्कार। ख्वाबों को मुठ में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सर भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी बंद ख्वाबों के जुनू इधर उधर बिखरे।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशालापन रात के नाटे में चांद से बतियाती अपना सफर पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों पेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम झटक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: दिव्य भारती से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। रेत की आवाज के डो पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई। फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था सपनों का शहजादा। बस वो तिलिस्म शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा भी सुनो।
1: सुन के शर्मा जाओगी?
2: तुमसे नहीं,

उड़ती फुदकती तितली भरों के पीछे भागती, कोयल रीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए ली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से ली हुई फुलवार पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद यही शहजादा था, ख्वाबों का शहजादा।

उस शहजादे ने पलकों की पंगड़ी पर फूलों का झुंड धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमाया। उस बीज प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो आ रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है प्यार के अनके।

वो यहीं पर। ऐसे नहीं पाऊंगा, तुम दायरे में खड़ जाओ, इसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा मर जाओ।

0: आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौ देशों के साथ भारत भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल औद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्किल के साथ जोड़ पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बिलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखे हैं। प्रधानमंत्री

0: मोदी 5 दिन की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचे। मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत देगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग करने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यू की 2 बार परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में आई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेस से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय अर्जीकर दुष्कर्म हत्या मामले आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतकरण किया जा चुका है। मणिपुर की महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पश्चिम से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Ireland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third Indo-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investment from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्ष में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत के निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides are clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Ireland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries share similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his